अगर गुमनाम है कोई तो उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे आपका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। आचार्य 90 FM को जब साथ आप जैसे ऑडियंस का मिल जाए। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे प्यारे ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। तुम कसो असा, हाउ आर यू ऑल। भाई गर्मी से तो सबका ही एकदम खराब हाल है। अब इस गर्मी की मार को थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं जिनमें अच्छी रेसिपीज और कुछ अपनापन भी हो। तो फिर चलिए ऐसी रेसिपी सुनाते हैं जो सुपर फूड होने के साथ साथ फेमस रेसिपी भी है। पहले आप मुझे बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फूल जो पवित्रता, सौंदर्य, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, उसका नाम क्या है? ये कीचड़ भरे तालाबों में उगता है लेकिन फिर भी निर्मल होता है। ये स्टेडी वाटर मतलब रुका हुआ पानी तालाब और कीचड़ में उगता है। इस फूल की पंखुड़ियों पर पानी नहीं रुकता। ये जीवन की चुनौतियों के बीच भी पवित्र रहने का प्रतीक है। इसे डेकोरेशन, मेकअप और मेडिसिन में भी यूज करते हैं। वैसे माता लक्ष्मी इसे अपना आसन बनाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में इसे पद्म के नाम से जाना जाता है। कुछ याद आ रहा है? कश्मीर में इस खूबसूरत फूल के तने से नदरू नाम की सब्जी बनती है। यस, सही गेस किया आपने। मैं बात कर रही थी कमल के फूल के बारे में, लेकिन हमारी आज की रेसिपी इस कमल के फूलों के बीज से बनने वाली है। आमतौर पर इसे मखाना या फॉक्स नट्स मींस कमल के बीज के नाम से जाना जाता है। ये एक सुपर फूड ही नहीं, एकदम फेमस सुपर फूड है। इसे मेनली बिहार के तालाबों और झीलों में उगने वाले कांटेदार पौधों से पाया जाता है। वैसे दुनिया का 85% मखाना तो हमारे बिहार में ही पाया जाता है। लो कैलोरी और हाई फाइबर वाला ये मखाना एंटी एजिंग होता है। इसे खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। क्या आपने इसे घी रोस्ट करके कभी खाया है क्या? एकदम टेस्टी टेस्टी स्नैक आइटम है ये जनाब। तो चलिए आज हम एक फेमस मिठाई बनाते हैं जिसका नाम है मखाना खीर। आप इसे व्रत या किसी खास मौके पर 15 से 20 मिनटों में बना सकते हैं। वैसे कैल्शियम और प्रोटीन से भरी ये मखाना खीर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों ही देगी। हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम आज इसे बना रहे हैं। मखाना खीर बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। मखाना 2 कप मींस अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 grams। फुल क्रीम मिल्क 1 लीटर। देसी घी 2 चम्मच। चीनी 1/2 कप या स्वादानुसार। इलायची पाउडर 2 चुटकी। चॉप ड्राई फ्रूट्स 2 बड़े चम्मच। मुनक्का 1 चम्मच। 2 चम्मच दूध में भिगोए हुए केसर के धागे 8 से 10। और ढेर सारा प्यार भी चाहिए क्योंकि आपके मन की भावनाएं इसमें उतरने वाली है। अब हम इसकी रेसिपी सुनते हैं। एक कढ़ाई में घी को गर्म कीजिए, फिर उस घी में धीमी आंच पर मखानों को भून लीजिए। थोड़ी देर मतलब 4-5 मिनटों में मखाने क्रिस्पी होंगे। उन गर्म मखानों को ठंडा करें और मिक्सर में पीस लीजिए। ध्यान रहे मखानों को पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है। इसे जाड़ा जाड़ा मींस दरदरा पीस लीजिए। फिर एक मोटे बेस वाले बर्तन में दूध को उबालिए। फिर उसे कुछ टाइम के लिए लो फ्लेम पे पकाइए। लगभग 10 मिनटों के बाद वो दूध गाढ़ा बनने लगेगा। अब इस गाढ़े से दूध में सारे ड्राई फ्रूट्स और केसर वाला दूध ऐड कीजिए। इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाइए। थोड़ी देर बाद मखाना खीर एकदम गाढ़ी और मलाईदार होगी। फिर इसमें शक्कर, इलायची पाउडर और ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर रेसिपी में आप ढेर सारा प्यार ऐड कीजिए। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरेंगी और खाने वाला इसे महसूस करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ। अगर सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में हल्का भूनकर आप इस खीर में डालेंगे तो मखाना खीर और ज्यादा टेस्टी बनेगी। फिर इस मखाना खीर को एक सुंदर से बर्तन में निकालिए। फिर भगवान को इस खीर का भोग लगाइए और लुत्फ उठाइए इस टेस्टी मखाना खीर का।
वैसे ये मखाना खीर अगर आप मिल बांट कर मींस शेयर करके खाएं तो इसका टेस्ट और ज्यादा निखर कर आता है। यकीन ना आए तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे इस मखाना खीर को आप ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। गर्मियों में गर्म खाने की बजाय ठंडा खाना अच्छा लगता है कि नहीं? वैसे आपको खीर के साथ क्या खाना अच्छा लगता है? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं स्वाद का जायका ऑन आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। पेश है खीर की तारीफ में एक छोटी सी कविता। दूध कढ़ाई में जब खोले तब धीमी आंच पर मखाना डोले, मम्मी जब खीर बनाए इलायची की खुशबू छाए, मखाना दूध और शक्कर का मेल, टेस्टी ड्राई फ्रूट से सचता ये खेल, ठंडी ठंडी मीठी मीठी मन को ललचाए ये खीर रसीली, व्रत त्योहार या मेहमान आए हर मौके का स्वाद बढ़ाए, इसे खाकर खिला मन का कमल, मखाना खीर से माहौल गया बदल। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे हमारे भारत देश में खाना खिलाने के लिए हम बहाने ढूंढते ही रहते हैं, है कि नहीं? यहाँ तरह तरह के लोग और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड हमेशा ही मिलता है। हमारे इस स्वाद का जायका शो पर हम आपको इनकी दोबारा से पहचान कराएंगे। बैक टू बेसिक्स, क्योंकि आप हमारे खास दोस्त हैं और दोस्ती पक्की करने के लिए खाना खिलाना एक अच्छा तरीका है। कहते हैं कि रिश्तों के नाम भी अजीब है। आप सिर्फ ऑडियंस ही नहीं अपनों जितने करीबी हैं। इस बात पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार हम और बातें करेंगे।

वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। हमारी अगली रेसिपी है पान का मीठा शरबत। वैसे खाना खाने के बाद पान का बीड़ा खाना अच्छा होता है, I mean पान का पत्ता खाना। वैसे इस पान के पत्ते पर सौंफ, गुलकंद, थोड़ी इलायची डालकर आप कभी खाकर देखिए जनाब, इतनी टेस्टी मिठाई खाने की फीलिंग आएगी कि पूछो मत। पान बीड़ा को एक माउथ फ्रेशनर के रूप में खाया जाता है। कहते हैं कि इस पान के पेड़ पर सांप होते हैं, इसलिए पान के पत्तों को खाने से पहले उसका आगे का और पीछे का हिस्सा तोड़ना जरूरी है, क्योंकि सुबह की ओस की बूंदे ड्यू ड्रॉप्स को ये सांप चाटते हैं, तो हो सकता है कि वो पत्ते हमारी सेहत पर बुरा असर डाले। तो इस रिस्क से निपटने के लिए हम पान का आगे का और पीछे का हिस्सा तोड़ते हैं। वैसे ये पान के पेड़ घनी छाया और ठंडक देते हैं। पान के पत्तों को हम पूजा में भी यूज करते हैं। तो आइए हम और आप दोनों मिलकर बनाते हैं पान का शरबत। पान का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। पान के पत्ते मींस बीटल लीफ 2, इसका आगे का और पीछे का थोड़ा सा हिस्सा आप तोड़ दीजिए। वजह तो मैंने बता दी है क्यों। गुलकंद 1 चम्मच, भिगोया हुआ गोंद कतीरा 1 चम्मच, गोंद कतीरा मतलब डिंक, सौंफ 1 चम्मच, भिगोया हुआ सब्जा 1 चम्मच। सौंफ को आप रात भर पानी में भिगोकर रखिए। इसे यूज करते समय इसका पानी हटा दीजिए। सेम विद सब्जा सीड्स, मतलब सब्जा सीड्स को भी रात भर भिगोइए, सुबह उसका एक्स्ट्रा पानी हटाकर सिर्फ फूले हुए सब्जा को आपको यूज करना है। इसके अलावा हमें चाहिए ठंडा दूध 1/2 कप, ठंडा पानी 1/2 कप। अब हम इस टेस्टी शरबत की रेसिपी सुनते हैं। मिक्सर के एक जार में पान के पत्ते, गुलकंद, सौंफ, ठंडा दूध, ठंडा पानी, इन सारी चीजों को अच्छे से घुमाइए। 2 मिनट के बाद लाइट ग्रीन कलर का मस्त शरबत तैयार होगा। फिर इस शरबत को एक सुंदर से सर्विंग ग्लास में निकालिए। उसमें भिगोया हुआ गोंद कतीरा मींस डिंक और सब्जा डालकर चम्मच से मिक्स कीजिए। अब अपने मुखड़े पर एक प्यारी सी स्माइल लाइए। पान के शरबत की छवि को अपने मोबाइल कैमरा में बंद कीजिए, फिर इसका लुफ्त उठाइए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। वैसे ये पान का शरबत आपका शरीर और

दिमाग इन दोनों को ठंडक का एहसास दिलाएगा और ये सब करना गर्मी में बेहद जरूरी है। इस पान शरबत की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है हरियाली शरबत। पान का शरबत देखकर याद आई हरियाली। पान का शरबत देखकर याद आई हरियाली, जैसे बागों की छांव में नाचे नार मतवाली। गर्मी के सीजन में खुद से ही हो रहा युद्ध, तो पियो ग्लास फुल खान पान वाला दूध। इसे पीकर तुम हो जाओ कूल, टेस्ट है इतना प्यारा कि गर्मी को जाओगे भूल। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आपसे बात कर रही हूँ इस शो पर जिसका नाम है स्वाद का जायका। वैसे स्वाद और जायका ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। आई मीन दे आर फ्रेंड्स। इन दो शब्दों में छोटा सा फर्क है और वो फर्क ये है कि स्वाद को हम अपनी टंग से मींस अपनी जीभ से टेस्ट करते हैं, जैसे खट्टा मीठा या नमकीन स्वाद, और जायका हमें उस स्वाद का अरोमा मींस महक यानी खुशबू और टेम्परेचर बताता है। फॉर एग्जाम्पल, शक्कर का स्वाद मीठा होता है, राइट? लेकिन बर्फी का जायका उसमें इस्तेमाल की हुई केसर, इलायची और जायफल जैसी चीजों से पता चलता है। इन शॉर्ट, स्वाद एक घटक है जबकि जायका एक कंप्लीट खाने का एक्सपीरियंस है ना? इंटरेस्टिंग बात। वैसे ये जो शेफ होते हैं उनके हाथों से बना खाना मतलब एक जादू सा लगता है कि नहीं? और उसके आगे घर के खाने को हम ध्यान नहीं दे पाते। वैसे शेफ बनना कोई आसान बात तो है नहीं जनाब। स्वाद के बादशाह, रसोई के सरताज, हर निवाले में जादू, हर रिश्ते में ताज। उलझने दिल को सुलझाएं स्वाद के नए रस से। रसोई का कलाकार अपनी कला में प्रवीण, दिल का रिश्ता बनाता है खास अपने हुनर से। इनके हाथों का खाना खाकर दिल को मिले सुकून। अदब से पूछे हाल हमारा और खाना बनाए जो हुकुम। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछू, क्या आपके हाथों का जायका आपकी स्माइल से भी अच्छा है क्या? क्या बात! वैसे आपके हाथों का खाना ना सही, लेकिन आपके चेहरे की स्माइल ही मेरे लिए काफी है। कहते हैं कि इफ कुकिंग इज एन आर्ट, तो हर डिश के पीछे एक आर्टिस्ट होता है और हर घर में एक फूड आर्टिस्ट तो होता ही है। बच्चों के टिफिन को रेडी करना, सबका नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, त्योहार स्पेशल खाना, उपवास स्पेशल खाना, बीमार फैमिली मेंबर के लिए अलग सा डाइट फूड, ऐसी अनगिनत टाइप का खाना बनाना कितना मुश्किल है। मुझे तो ये लिस्ट सुनकर अभी से टेंशन हो रही है। इसलिए तो हम खाना खिलाने वाले उस व्यक्ति को अपना ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड दिखा ही सकते हैं। वैसे आप हर रोज किसके हाथों से बना खाना खाते हैं? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो भाई खाना खाने के बाद करें तो क्या करें? आप चाहे तो खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं, या फिर धीरे धीरे टहल सकते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमिए फिरिए, कुछ नहीं तो अपने घर में ही 10-12 राउंड लगाइए, फिर देखिए कितना अच्छा फील होता है। आज हम बात करेंगे भारत के फेमस सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर की। शेफ संजीव कपूर का फेमस डायलॉग है नमक स्वाद अनुसार। इन्होंने भारतीय खाने को इंटरनेशनल पहचान दी है। खान पान क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए शेफ संजीव कपूर को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एशिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कुकरी शो जिसका नाम था खाना खजाना, इस शो के माध्यम से शेफ संजीव कपूर घर घर में फेमस हुए। इंडियन डेलिकेसीज उसमें स्पेशली पंजाबी स्टाइल खाने को वो एकदम आसान मेथड से बनाना सिखाते थे। उन्होंने कुकिंग से रिलेटेड किताबें भी लिखी है। उनकी फेमस डिश का नाम है शाम सवेरा डिश। इस रेसिपी को बनाते समय पालक के कोफ्ते के अंदर पनीर भरा होता है और इस पालक पनीर कोफ्ते को टमाटर और काजू की रिच ग्रेवी में परोसा जाता है। वाओ!
वैसे नवंबर 2017 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड फूड इंडिया इस शो में शेफ संजीव कपूर ने लगभग 1000 किलो के करीब वजन की खिचड़ी पकाकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। इस खिचड़ी को पकाने के लिए उनके साथ 50 शेफ की एक टीम भी थी। इंडिया गेट न्यू दिल्ली एरिया में ये अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। हमें नाज है ऐसे खान समय पर जिसने अपने हाथों के जादू से कुकिंग को एक विशेष पहचान दी है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

बैक टू आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। मैं हूँ आजय भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। वैसे गर्मियाँ तो बढ़ती ही जा रही है, रुकने का तो नाम ही नहीं। और ऐसे में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात ये है कि आप पानी पीते रहिए। प्यास लगेगी तब पानी पिया जाएगा, ऐसे मत सोचिए। हर एक दो घंटे बाद पानी पीते रहना अच्छी आदत है। वैसे घर का बना ताजा खाना हमें थ्रू आउट द ईयर खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन इस गर्मी वाले सीजन में होममेड ताजा खाना हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। गर्मियों में डीप फ्राइड, स्पाइसी और फास्ट फूड से आप जरा दूर ही रहिए। चाय, कॉफी और बहुत ज्यादा मीठी चीजों से आप बचे। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, बाप रे बाप, फिर क्या खाना चाहिए? आप ककड़ी और दही का रायता खाइए। वाटरमेलन, मस्क मेलन का सेवन हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। मैंगोस को एक घंटे के लिए ठंडे पानी में डुबाकर रखिए। ऐसा करने से उसकी हीट थोड़ी कम होगी, फिर आप उसे भी खा सकते हैं। नींबू पानी, गन्ने का रस और कोकम शरबत पीने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। रूम टेम्परेचर वाली लस्सी या फिर छाछ हमारे पेट को शांत रखती है। आम पना मीन्स कैरी का शरबत हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे समर सीजन में कुछ लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, राइट? भाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं है? बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सभी आइसक्रीम प्रेमी होते हैं। लेकिन क्या आइसक्रीम सचमुच हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है? क्या आप जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में जब विंटर सीजन होता है तब वहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? जब बर्फ गिर रही हो और उन्हें अपनी बॉडी को गर्म रखना हो तब वो लोग खाते हैं आइसक्रीम। जी हाँ, ठीक सुना आपने। फॉरेन कंट्रीज में जब हैवी स्नोफॉल होता है तब वहाँ के लोग आइसक्रीम खाने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, क्योंकि आइसक्रीम की तासीर गर्म होती है। आइसक्रीम जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तब उसे पचाने के लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है और इस प्रोसीजर में हीट जनरेट होती है। इसीलिए तो आइसक्रीम खाने के थोड़ी देर बाद हमें जोरदार प्यास लगती है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। बाय द वे, व्हाट इज योर हेल्थ मंत्रा टू बीट द हीट? वैसे फ्रिज का ठंडा खाना हमारी सेहत पर कुछ अच्छा असर नहीं करता। इट इज क्वाइट अनहेल्दी ऑप्शन। फ्रिज के खाने को आप रूम टेम्परेचर पर लाकर खाएं तो थोड़ा ठीक है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि गर्मी के सीजन में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, क्योंकि सनराइज जल्दी होता है और सनसेट थोड़ी देर से होता है? तो क्यों ना हम भी सुबह जल्दी उठकर अच्छा सा और हेल्दी सा जायकेदार नाश्ता करें। अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी हो तो दिन भर एनर्जी महसूस होती है। Am I right? वैसे इस साल 21 जून 2016 को ग्रीष्म संक्रांति है, वर्ष का सबसे लंबा दिन और छोटी रात। तो आप इस खास दिन को क्या खाकर सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में जून के महीने में मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है? जी हाँ, मैं आम्र महोत्सव की बात कर रही हूँ। इस फेस्टिवल में आप जरूर जाइए। फलों के राजा की विविधता का जश्न आप दिल खोल कर मनाइए। इस आम्र महोत्सव में 100 से ज्यादा वैरायटीज के मैंगोज का एग्जीबिशन होता ही है। साथ ही आम से बने अनेक व्यंजनों का लुत्फ आप आराम से उठा सकते हैं। मोस्टली दिल्ली, लखनऊ, पटना और रायपुर में मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अल्फोंसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा जैसी फेमस वैरायटीज के अलावा कुछ रेयर वैरायटीज को भी मैंगो फेस्टिवल में एग्जिबिट किया जाता है। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे हमारे देश में मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन मीन्स आम खाने की प्रतियोगिता भी काफी फेमस है। वैसे बिहार के मधुबनी में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में मुकुल मिश्रा नाम के व्यक्ति ने 5 मिनट में 32 आम खाकर रिकॉर्ड क्रिएट किया था। मिथिला मैंगो फेस्टिवल में एक हाथ से आम खाने का वीडियो काफी वायरल हुआ था। वैसे गर्मी के सीजन में आप एक या दो आम हर रोज खा ही सकते हैं।
विटामिन सी से भरा ये आम फल हमारी स्किन और इम्यूनिटी के लिए बेनिफिशियल है। वैसे 24 घंटे सिर्फ आम खाने का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, लेकिन एक प्रिकॉशन आप जरूर लीजिए। आम को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज आपकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है। आम का मुरब्बा, आम का अचार, आम पापड़ या कुछ और, आपको आम से बनी कौन सी रेसिपी खास लगती है? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। इस आम की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है आम। मुझे बहुत भाते हैं नानी मीठे मीठे आम, भर डालिया तो मुझे भी खिला दे, लूंगा तेरा नाम। बहुत बड़ी है बगिया तेरी, छोटा मेरा पेट, और पेट से भी छोटा है मेरे मुंह का गेट। घबरा मत, खा पाऊ में बगिया भर के आम, न दे टॉफी न दे बिस्किट, दे बस केवल आम। आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, सिर्फ एक दिन कर दे इस बगिया मेरे नाम। इस प्यारी सी कविता के कवि है श्री शिवचरण चौधरी जी। भाई, हमारे खास ऑडियंस से आज हमने आम बातें तो कर ली। आपको हमारा आज का शो कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हो तो हमें जरूर बताइए। और अगर आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइए। हमारे देश की और विदेशों की रेसिपीज को सुनने के लिए, उनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों को एंजॉय करने के लिए स्वाद का जायका जरूर सुनिए एवरी मंडे एट 1 PM एंड एवरी फ्राइडे एट 4 PM। हमने आपके साथ अपॉइंटमेंट रखी है। आप इस शो में शामिल होकर स्वाद का जायका सुनिए और कुछ मनपसंद गीत भी गुनगुनाइए। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का। ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं बल्कि पक्का वादा, हम आपसे दोबारा मिलने जरूर आएंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज हम लेके आए एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिलों को छू कर आपको उस दौर में लेके जाएगी जिसकी शायद आपने कल्पना नहीं की होगी। हम हमेशा इतिहास में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्रांतिकारियों ने अपनी जिंदगी की आहुति दी थी, शहीद हुए थे हमारे देश को आजाद करने के लिए। सोचिए दोस्तों, उस समय जब टेलीफोन नहीं हुआ करता था, जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, जब कम्युनिकेशंस के कोई माध्यम नहीं थे, उस समय प्यार कैसे पनपता होगा, प्यार कैसे होता होगा, नजरें कैसी मिलती होंगी, इजहार कैसे होता होगा। सालों सालों, महीनों महीनों, हफ्ते हफ्ते, जब दो लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते होंगे। हाँ, उसी दौर की कहानी मैं लेके आया हूं आज, एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत सारे फीलिंग्स, इमोशंस, देश के प्रति समर्पण और देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल है ये कहानी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की कहानी का पहला भाग, जब आजादी एक ख्वाब थी। साल था 1930। हिंदुस्तान की हवा में अजब सी खामोशी थी। शहरों में अंग्रेजी हुकूमत का दबदबा था। उनकी पुलिस घोड़ों पर बैठे सड़कों पर घूमती थी। उनके झंडे सरकारी इमारतों पर लहराते थे और उनके कानून आम लोगों के सर पर तलवार की तरह लटकते थे। लेकिन इसी खामोशी के नीचे कुछ और भी था, एक हल्की सी चिंगारी, एक जज्बा और एक लफ्ज जो धीरे धीरे धीरे धीरे हर बाजार और हर गांव की हवा में घूमने लगा था। और वो लफ्ज कुछ और नहीं था, था आजादी। आजादी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, आजादी ब्रिटिश सोल्जर से, आजादी ब्रिटिश पुलिस से, यानी कि आजादी इस ब्रिटिश हुकूमत से जो हमारे ऊपर न जाने कितने सालों से हुकूमत कर रही थी। लोग खुलकर तो नहीं बोलते थे, पर रात को चूल्हे बुझ जाते थे और अंधेरा गांव को अपनी बाहों में ले लेता, तब लोग धीरे धीरे बात करते थे, कब तक अंग्रेजों का राज चलेगा, कब मिलेगी हमें आजादी। इसी वक्त उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बारागांव में एक नौजवान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला था। उसका नाम था अर्जुन मिश्रा। उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन उसकी आंखों में एक अजब सा जुनून था, जैसे उसने दुनिया को सिर्फ देखा ही नहीं, महसूस भी किया।

करते हुए। उसने देखा था लोगों को गिरते हुए, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गिरने के बाद भी लोग उठ जाते थे और फिर से नारे लगाते थे। उस दिन अर्जुन के अंदर कुछ जाग गया था। एक सवाल, अगर इतने लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो मैं क्यों चुप रहूं? एक शाम सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी और लाल रंग से भर गया था। अर्जुन अपने घर के आंगन में खड़ा था। अर्जुन की मां चूल्हे के पास बैठी थी, उनकी आंखों में डर था। सच में जा रहे हो? अर्जुन की मां ने धीरे से अर्जुन से पूछा। अर्जुन उनके पास बैठा। मां, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मां ने उसके चेहरा पकड़कर देखा, जैसे उस पल को याद में बसाना चाहती हो। तभी अर्जुन के पिता आंगन में आए। उन्होंने अर्जुन को कुछ पल देखा, फिर बोले, बेटा, आजादी की राह आसान नहीं होती। इसमें जेल है, दर्द है और कभी कभी मौत भी। अर्जुन ने सीधी आंखों से उनकी तरफ देखा। पर गुलामी में जीना भी तो जिंदा रहना नहीं होता ना पापा? हम कितने सालों तक इस अंग्रेजी हुकूमत के बोझ के तले दबे रहेंगे और कितने सालों तक ये अंग्रेजी हुकूमत हमें दबाएगी और कितने सालों तक ये अंग्रेजी हुकूमत हमसे हमारा हक छीनती रहेगी और कितने सालों तक ये अंग्रेजी हुकूमत हमें कीड़े मकोड़ों की तरह मारती रहेगी। कुछ पल की खामोशी हुई, फिर पिता ने धीरे से कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, सच्चाई और इंसानियत कभी मत छोड़ना। अर्जुन ने अपने माता पिता के पैर छुए और उस रात वो घर छोड़कर निकल पड़ा आजादी के सफर पर। कुछ महीनों बाद अर्जुन एक क्रांतिकारी दल का हिस्सा बन चुका था। उनके लीडर थे राघव बाबू। उनकी आवाज में बिजली थी, उनके लफ्जों में आग। वो गांव गांव जाते, लोगों को जगाते, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते। अर्जुन और उसके साथी अक्सर रात में सफर करते, दिन में छुप कर रहते। कभी मंदिर के आंगन में मीटिंग होती, कभी किसी खेत के कोने में, कभी किसी स्कूल के छोटे से कमरे में। हर वक्त एक डर साथ रहता था, ब्रिटिश पुलिस का डर। पर उस डर से बढ़कर एक सपना था, आजादी का सपना। एक दिन उनका जत्था पहुंचा नंदपुर गांव। गांव शांत था, कच्चे घर थे, बच्चे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास खेलते थे और थोड़ी आगे जाकर एक छोटा सा तालाब था। शाम ढल रही थी, आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। अर्जुन गांव वालों को मीटिंग के लिए बुला रहा था। तभी उसकी नजर तालाब की तरफ गई। वहां एक लड़की पानी भर रही थी, सफेद और नीली ओढ़नी, हाथ में मिट्टी का मटका, बालों की एक लट उसके चेहरे पर आ रही थी। उसने एक पल के लिए अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। वक्त जैसे एक पल के लिए रुक गया, फिर लड़की ने नजर झुका ली और वो वहां से चली गई। अर्जुन उसे देखता ही रह गया। उस रात जब सब सो गए थे, अर्जुन की आंखों के सामने वही चेहरा, वही लड़की जो तालाब के पास थी, वही उसकी आंखों में घूम रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, कौन थी वो लड़की?

ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे अर्जुन की कहानी। अर्जुन नंदपुर गांव में जब एक मूवमेंट के लिए जाता है, तब वो वहां पे टकराता है तालाब पे एक लड़की से, और फिर पूरी रात वो उसी के ही ख्वाबों ख्यालों में खोया हुआ रहता है, और वो यही सोच में गुम होता है कि आखिर कौन थी वो लड़की। अब सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। अगली सुबह अर्जुन स्कूल के बाहर पैम्फलेट बांट रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, ये सब बांटने से क्या होगा? अर्जुन पलट कर देखता है, वही लड़की, तालाब वाली। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, शायद सब कुछ तो नहीं बदलेगा पर शुरुआत तो होगी। लड़की ने उसे ध्यान से देखा। बाबू, अंग्रेजों से लड़ना आसान नहीं है। वेलकम बैक दोस्तों, अर्जुन ने कहा, आजादी भी आसानी से नहीं आएगी और आजादी आसानी से नहीं मिलेगी। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा बरगद के पत्तों को हिला रही थी। फिर लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम लीला है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, अर्जुन मिश्रा। बस इतनी सी मुलाकात, लेकिन कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां ऐसे ही छोटी सी मुलाकात से शुरू होती है। 2 दिन बाद अर्जुन और उसका जत्था गांव छोड़ने वाला था। सुबह अर्जुन अपना झोला बांध रहा था, उसे एक फोल्डेड कागज मिला। उसने खोला, अंदर लिखा था, आपने कहा था आजादी आसान नहीं होती। शायद सही कहा था, पर क्या किसी का इंतजार आसान होता है? लीला। ये खत लीला ने अर्जुन के लिए लिखा था। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत जवाब लिखा, इंतजार मुश्किल होता है पर अगर वजह खूबसूरत हो तो इंतजार भी दुआ बन जाता है। अर्जुन। उसने चिट्ठी बरगद के नीचे रख दी और उस दिन से शुरू हुआ चिट्ठियों का सफर। 2 दिल, 2 लोग और बीच में सिर्फ कागज और लफ्ज। हर हफ्ते अर्जुन किसी न किसी बहाने नंदपुर के पास आता और एक चिट्ठी छोड़ जाता। लीला भी जवाब रख जाती, कभी शायरियों में, कभी सवाल में, कभी एक छोटी सी कहानी, और धीरे धीरे उन लफ्जों में मोहब्बत घुलने लगी थी। लेकिन वक्त उनके लिए एक और कहानी लेकर आ था। लेकिन वक्त उनके लिए एक और कहानी लिख रहा था, एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत और कुर्बानी एक ही रास्ते पर चलने वाली थी, और उन दोनों को अभी तक पता भी नहीं था कि एक दिन वो बरगद का पेड़ उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा गवाह बनने वाला है, और उसके नीचे लिखी गई एक चिट्ठी कभी लौट कर नहीं आएगी। लफ्जों में पलती मोहब्बत नंदपुर के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अब सिर्फ हवा नहीं चलती थी, वहां लफ्ज रुकते थे, चिट्ठियां रुकती थी, और 2 दिल अपनी बातें कागज पर उतारते थे। अर्जुन और लीला ने कभी ज्यादा मुलाकात नहीं की, पर उनकी चिट्ठियां उनकी खामोशी से ज्यादा बोलती थी। हर हफ्ते अर्जुन किसी न किसी बहाने नंदपुर में आ रहा था, कभी किसी मीटिंग के नाम पर, कभी किसी गांव में जागरूकता अभियान के लिए, और हर बार
बरगद के पेड़ के नीचे एक चिट्ठी छोड़ जाता। लीला भी वहां आती और उसका जवाब रख जाती। उन्होंने एक दूसरे के बारे में सब कुछ लिखना शुरू कर दिया, अपने बचपन की बातें, अपने सपने, अपने डर। एक बार लीला ने लिखा, अर्जुन कभी कभी मुझे लगता है तुम पागल हो। जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उसमें जान भी जा सकती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कुछ दिन बाद जवाब आया, लीला डर तो लगता है पर गुलामी से ज्यादा नहीं, और जब भी डर लगता है मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ लेता हूँ, फिर हिम्मत वापस आ जाती है। लीला ने वो चिट्ठी अपने तकिए के नीचे रख ली। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसके दिल में एक नया एहसास जन्म ले रहा था, एक एहसास जिसने शायद वो खुद एक एहसास जिसे शायद वो खुद भी नाम नहीं दे पा रही थी। समय बीतता गया, महीने बीत गए। अर्जुन और उसके साथी अब और भी ज्यादा सक्रिय हो गए थे। ब्रिटिश पुलिस अब क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए हर जगह तलाशी ले रही थी। कई लोग गिरफ्तार हो गए थे, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया था। एक रात अर्जुन ने अपनी चिट्ठी में लिखा, लीला अगर मेरी कभी चिट्ठी आनी बंद हो गई तो समझ जाना कि मैं किसी मुश्किल में हूं, पर एक बात याद रखना, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और खूबसूरत गलती थी, क्योंकि अब मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। लीला ने जब ये पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया वो सिर्फ अर्जुन का इंतजार नहीं करती, वो अर्जुन से मोहब्बत करती है। लेकिन उसने कभी ये बात लिखी नहीं, शायद डर था, शायद वक्त का इंतजार। एक शाम लीला तालाब के पास बैठी थी, हवा में ठंडी सी खुशबू थी, आसमान धीरे धीरे नीले से काला हो रहा था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया, अर्जुन मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, पर शायद मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही हूँ। अगर तुम अगले हफ्ते नंदपुर आ सको तो शाम को तालाब के पास मिलना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, लीला। उसने चिट्ठी फोल्ड की और बरगद के नीचे रख दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जैसे कोई फैसला हो गया।

एक हफ्ता बीत गया था, वो दिन आ गया। शाम ढल रही थी, तालाब के पास हवा हल्की हल्की चल रही थी, पानी में सूरज की आखिरी रोशनी चमक रही थी। लीला वहां खड़ी थी, उसने वही नीली ओढ़नी पहनी थी जो अर्जुन ने पहली बार देखी थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, हर आवाज पर उसे लगता अर्जुन आ रहा है। कभी पेड़ों के पत्तों की आवाज होती, कभी किसी कदमों की, पर जब भी वो मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। सूरज ढल गया, गांव शाम की ओर ढल रहा था, तालाब का पानी भी अब काला सा लगने लगा था, पर अर्जुन नहीं आया। लीला ने सोचा शायद देर हो गई है, वो कल आएगा। अगले दिन लीला फिर बरगद के पेड़ के पास गई। कोई चिट्ठी नहीं थी, कोई संदेशा नहीं था, कोई शब्द नहीं थे, कोई लफ्ज नहीं थे, बस इंतजार। अगले दिन भी कुछ नहीं आया। एक दिन गुजरा, दो दिन बीत गए, तीन दिन निकल गए, फिर पूरा एक हफ्ता बीत गया। ना अर्जुन आया, ना उसकी कोई चिट्ठी। लीला का दिल बेचैन होने लगा। उसने हर दिन तालाब के पास जाकर इंतजार किया, हर दिन बरगद के पेड़ को देखा, पर वहां सिर्फ हवा होती थी और खामोशी। एक दिन वो हुआ जिसकी लीला ने कभी कल्पना नहीं की थी। गांव में खबर फैल गई, लोग चुपके चुपके बातें कर रहे थे। ब्रिटिश पुलिस ने पास के जंगल में कुछ क्रांतिकारियों को घेर लिया था, गोलियां चली थी, कई लोग मारे गए थे। उनमें से एक नाम था अर्जुन मिश्रा। लीला को जब ये खबर मिली, उसके हाथ से मटका गिर गया। उसे लगा ये झूठ है, ये गलत खबर है, अर्जुन के साथ ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। पर कुछ दिन बाद राघव बाबू गांव आए। उन्होंने सबको बताया कि अर्जुन कितना बहादुर था, उसने अंतिम पल तक हार नहीं मानी, उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। लीला चुप खड़ी थी वहां, उसने सब कुछ सुना, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। उस रात लीला अकेली बरगद के पेड़ के पास गई। हवा थोड़ी तेज चली, पत्ते हिलने लगे, जैसे पेड़ खुद कोई कहानी सुनाने वाला था। तभी उसकी नजर मिट्टी में दबे एक पुराने कागज पर पड़ी। उसने उसे निकाला, कागज पुराना था, पर लिखावट पहचान में आ रही थी। वो लिखावट अर्जुन की थी। लीला के हाथ कांप गए। उसने धीरे से चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था, लीला अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं वापस ना आ पाऊं। ब्रिटिश पुलिस हमारे पीछे है और हो सकता है मैं बच ना पाऊं, पर एक बात कहनी थी। आजादी मेरी जिम्मेदारी थी और तुम मेरी खुशी। मुझे अफसोस सिर्फ एक बात का रहेगा कि मैं तुमसे वो बात सामने खड़े होकर नहीं कह पाया जो मैं तुमसे इस चिट्ठी में कह रहा हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत करता हूं, हमेशा से, और इस बार नहीं शायद,

के बाद भी मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। अर्जुन, लीला की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया। तालाब के पास हवा चल रही थी, बरगद के पत्ते सर सर कर रहे थे, और कहीं दूर जैसे वक्त खुद कह रहा हो, कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी अमर हो जाती है, क्योंकि कुछ मोहब्बत है और कुछ कुर्बानियां कभी खत्म नहीं होती, बस कहानी बन जाती है। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने सुनी आज की कहानी, जो थी प्री इंडिपेंडेंस एरा की, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और मिलेंगे हम फिर से अगले हफ्ते एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। थैंक यू।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो कहानियों का गुल्लक में। कहानियां जो हमारे दिल को छू लेती है, कहानियां जो कभी कभी खुशी के पल देती है तो कभी कभी गम के पल भी, कहानियां जो हमें जीने का मकसद सिखाती है, और कहानियां हमें उन दिनों की याद दिलाती है जो हमने बचपन में जी होती है, या फिर हमारे खुशियों के पल में, या फिर बहुत सारे पल में। तो आइए दोस्तों, आज मैं सुनाता हूं आपको एक ऐसी कहानी, होटल शालीमार। होटल शालीमार कहानी है एक ऐसे कपल की जो गांव से आते हैं और बहुत ज्यादा गरीब है। विकास इस कहानी का सबसे प्रमुख किरदार और साथ ही साथ उसकी पत्नी, वो भी है इस कहानी का प्रमुख किरदार, सुमन। विकास बचपन से ही अनाथ, बूट पॉलिश करने वाला एक साधारण सा लड़का, बहुत सिंपल। दिन की आमदनी लगभग 100 रुपए, और बड़ी मशक्कत के साथ उसकी शादी हो जाती है सुमन के साथ। सुमन जिसने अपनी पढ़ाई 3री-4थी कक्षा तक ही की होती है, और उसके बाद बड़ी गरीबी होने के कारण अपने फैमिली के साथ वो छोटे मोटे काम में लग जाती है, कभी खेती में, कभी किसी और कबाड़ी में, या कभी किसी और मजदूरी में। दिन गुजरे, साल गुजरे, और फिर देखते देखते जब सुमन बड़ी हो गई तो उसके घर वालों ने उसकी शादी विकास से कर दी। अब शादी होने के बाद विकास की एक ख्वाहिश थी कि वो अपने बेबी को कुछ ना कुछ तोहफा जरूर दे, पर उसकी आमदनी इतनी ना होने के कारण उसने सुमन से पूछा कि सुमन, मुझे आपको देने के लिए फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी जो भी इच्छा हो वो पूरी कर सकूं। सुमन मुस्कुराई और उसने विकास से कहा कि मुझे कोई भी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हारा साथ काफी है मेरे लिए। विकास मुस्कुराया और कहा कि मैं जानता हूं मेरा साथ काफी है तुम्हारे लिए, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी कुछ ना कुछ जरूरतें हैं, या कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर चाहिए जो तुम मुझसे मांग नहीं रही। सुमन एक पल के लिए सोचने लगी, और सोचते सोचते सुमन ने विकास से कहा कि मेरी बचपन से ना एक छोटी सी ख्वाहिश है कि वो जो नुक्कड़ पे आप होटल देख रहे हो, वहां पे जाके खाना खाना है। मैंने कई बार वहां से गुजरते समय देखा है कि जो हमारे गांव के बड़े लोग हैं वो जाते हैं वहां पे अपनी परिवार के साथ और खाना खाते हैं, बच्चे खुश होते हैं, वहां पे तरह तरह के पकवान मिलते हैं, तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। मैंने कभी उस होटल को अंदर से देखा नहीं है, और मैं नहीं जानती कि वहां के पकवान कैसे लगते होंगे, क्या वो जैसे हम पकवान बनाते हैं वैसे ही लगते हैं, या फिर वो कुछ अलग से लगते होंगे। बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि किसी दिन मैं उस होटल में जाके एक बार का खाना खाऊं। तो विकास कहते हैं ठीक है, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, पर इसके लिए मुझे तुम्हें थोड़ा समय देना पड़ेगा। सुमन की ये बातें उस दिन पूरी रात विकास के दिमाग में चलती रही। विकास इधर से उधर करवटें बदलते रहा, छत को देखता रहा, और सोचता रहा कि वो कुछ भी करके, कैसे भी करके सुमन की यह ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। पर विकास के पास ज्यादा पैसे ही नहीं थे, वो दिन के 100 रुपए कमाने वाला लड़का कैसे एक बड़े से और महंगे से होटल में जाके अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करेगा। और यही कश्मकश में, यही सोच में वो पूरी रात ढल गई। फिर सवेरा हुआ, और सवेरे के साथ आई एक उम्मीद की नई किरण।
उसने सोचा कि अगर मैं कम कमाता हूं तो क्या हुआ, मैं थोड़े दिन एक दो नौकरी और कर लूंगा जिससे मैं कुछ ज्यादा पैसे कमाऊं और उससे अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करूं। तो वो अपनी नई नौकरी के चक्कर में वो निकल पड़ा और उसे दो नौकरियां मिली। एक नौकरी ऐसी जो माल से भरी हुई गाड़ियां आती है गांव में, तो उसे खाली करने के लिए मजदूर की जरूरतें होती है, तो वहां पर वो जाता है और उसने वहां पर वो नौकरी पाई। और नौकरी पाने के बाद वो हर रोज सुबह वहां पर जाकर माल ढोने लगा, वो जो माल से भरी हुई गाड़ियां थी उन्हें खाली करने लगा और दिन के उसे 40 रुपए मिलने लगे। उसके साथ ही साथ उसने उसके एक दोस्त संदेश उसे कहा कि अगर तू बुरा ना माने तो कुछ दिन के लिए और कुछ घंटे के लिए मुझे अपनी रिक्शा चलाने दे, तो मेरी एक जरूरत आन पड़ी है, मैं उसके लिए थोड़े पैसे जमा करना चाहता हूं, तो संदेश तू मुझे मदद करेगा क्या? संदेश और विकास बचपन के दोस्त थे, तो संदेश ने कहा कि जरूर, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, पर तू पहले मुझे ये बता कि तू रिक्शा क्यों चलाना चाहता है, जब तू एक नौकरी तो कर रही है, बूट पॉलिश करता ही है तू, उसमें तेरा पूरा टाइम जाता है और साथ ही साथ अभी तूने एक और नौकरी कर रहा है गाड़ी खाली करने की, तो फिर अभी ये तीसरा काम क्यों करना चाहता है? तो फिर विकास संदेश से पूरा मांजरा बयां करता है कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी चीजें हैं और ऐसी अपनी बीवी की ख्वाहिश है जो उसे पूरी करनी है। तो इस बात में संदेश बड़े मजाकिया तौर पर उसे कहता है वारे जोरी के गुलाम और उसकी चुटकी लेता है।

0: पर अंदर ही अंदर संदेश को बड़ी खुशी महसूस होती है कि विकास बहुत दिनों बाद खुश दिखाई दे रहा है और वो चाहता है कि ठीक है ये खुशी उसके जिंदगी में बरकरार रहे। तो संदेश उसे कह देता है कि विकास तू जरूर मेरे रिक्शा लेके जा सकता है। अब पहला दिन आता है नौकरी का जब विकास जाकर गाड़ी खाली करता है, वहां से 40 रुपए कमाता है, और शाम को जब वो संदेश की रिक्शा लेकर जाता है तो एक दो किराए मिलते हैं, उसमें उस 60 रुपए की मजदूरी होती है, तो लगभग बूट पॉलिश के 100 रुपए और ये लगभग 100 रुपए मिला के एक दिन में उसके पास 200 रुपए जमा हो जाते हैं। वो 200 रुपए जब वो लेकर आता है तब वो सोचता है कि अब ये 200 रुपए रखे कहां, तो वो घर पूरा ऊपर से नीचे तक छान मारता है, इधर से उधर देखता है और सोचता है कि पैसे कहां रखूं कहां रखूं, किसी डिब्बे में रख दूं, पर डिब्बे में रख दूं तो शायद ये पैसों का पता सुमन को चल जाएगा और फिर सुमन पूछेगी कि क्यों पैसे जमा कर रहे हो। तो विकास सोचता है कि मैं ही कुछ एक तरकीब लाता हूं। तो विकास क्या करता है, कबाड़ ओपन करता है, जो उसके घर में एक छोटी सी अलमारी रखी होती है जो काफी पुरानी होती है, टूटी फूटी होती है, और जब वो अलमारी खोलता है तो देखता है उस अलमारी में चूहे इधर से उधर कूद रहे हैं। तो वो ये जरूर जान लेता है कि अगर इस अलमारी में मैं ऐसे ही पैसे रख दूं तो ये चूहे मेरे पैसों को कतर देंगे और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो विकास बाहर जाता है और एक छोटा सा गुल्लक खरीद के आता है और उस गुल्लक में वो पैसे रखता है और एक ताला लाता है, उस अलमारी को वो लॉक कर देता है ताले से, ताकि सुमन ना जान पाए कि विकास सुमन की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे जमा कर रहा है।
1: इतने सालों में ये फीलिंग भूल गया था।

0: पहले दिन तो 200 रुपए कमा लेता है, फिर दूसरे दिन जब जाता है विकास अपने काम के लिए, वही माल से भरी हुई गाड़ी खाली करने, तो देखता है कि वो गाड़ी पहले से ही खाली हो चुकी है और आज के दिन का काम खत्म हो गया। अब विकास थोड़ा मायूस हो जाता है। उसके पास एक ही जरिया होता है कि आज के पैसे वो जब शाम में रिक्शा चलाएगा तो उससे कमा लेगा, पर जब वो रिक्शा लेकर निकलता है शाम में तो उसमें भी उसके पास पैसे नहीं आते और उस पूरे दिन की कमाई लगभग जो बूट पॉलिश से आती है उसके जो रोज का काम है 80 रुपए। तो 2 दिन में ऐसे विकास 280 रुपए जमा करता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक हफ्ता गुजरता है। एक हफ्ते में बूट पॉलिश के काम से लेकर छोटे से लारी को खाली करने से लेकर माल की गाड़ी को खाली करने से लेकर और रिक्शा चलाने से लेकर पूरे हफ्ते में वो लगभग 700 रुपए जमा कर पाता। और वो ये जरूर जानता है कि अगर उसे होटल शालीमार में अपनी बीवी को लेके जाना है तो लगभग 2 से 2500 रुपए की उसे जरूरत है। एक हफ्ते में अगर वो 700 रुपए जो जमा कर पाया है, अगर यही काम वो निरंतर करे तो शायद एक महीने में वो 2 से 2500 रुपए जमा कर पाए। ऐसे ही करते करते करते करते करते करते पूरे 18 दिन हो जाते हैं। और 18 दिन में जब विकास घर आता है और पैसे गिनने लगता है तब लगभग 2283 रुपए वो जमा कर लेता है। और इतने पैसे काफी होते हैं कि वो अपनी बीवी को लेके जाए, और इतने पैसे काफी होते हैं कि वो अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा कर सके। और जब वो पैसे देखता है तो वो बड़ा खुश होता है, जैसे बच्चा किसी खिलौने की जिद करता है और उसे वो खिलौना मिल जाता है तो वो बच्चा किस तरीके से खुश होता है। या फिर आप बरसों से किसी
1: जब से हुआ तेरे नजदीक है दिल के मोहल्ले में सब ठीक है।

काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। आचार्य 90 एफएम के ऑडियंस से मिलने का किया था वादा, आपसे दोस्ती निभाने का भारतीय सीमा का इरादा। स्वाद का जायका इस शो के ऑडियंस को आरजे भारतीय सीमा का प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। काई हाल है थारा भाई, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। अब का बताएं भाभी, गर्मी ने तो सबकी हालत ही बेकार कर दी है। हमें तो बड़ी दिक्कत सी हो रही है, पर का करें, हमारे प्यारे ऑडियंस से दोस्ती निभाने हमें आना ही पड़ता है। वैसे अच्छा गाना और टेस्टी खाना, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अब रोज रोज क्या बनाए ये तो बड़ी मुश्किल है, राइट? इस सवाल का तो जवाब किसी के पास नहीं होता, तो क्यों ना आज हम आचार्य 90 एफएम के ऑडियंस के लिए कुछ जुगाड़ रेसिपीज बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि गर्मियों में सिंपल और होममेड खाना खाने से हमें दिन भर फ्रेश फील होता है। तो तैयार हो जाइए हमारी फर्स्ट रेसिपी सुनने के लिए, जिसका नाम है गुलाबी दही। गुलाबी दही, इस नाम को सुनकर आपको हो रही एक्साइटमेंट को मैं हमारे स्टूडियो में भी फील कर सकती हूँ। वैसे देखा जाए तो ये रेसिपी, गुलाबी दही को आप एज अ योगर्ट यूज कर सकते हैं। जब गर्मी ज्यादा बढ़े और कुछ खाने का मन ना हो, तब आप ये जुगाड़ रेसिपी बना ही लीजिए। हम सब जानते ही हैं कि सुबह के टाइम दही खाना हेल्दी होता है, क्योंकि दही से पेट शांत रहता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण मीन्स हमारे नटखट कान्हा, उनको भी दही, दूध और मक्खन खाना बेहद पसंद है। वैसे आपकी ब्यूटी रेजिम में आप दही खाना ऐड करें तो आपके बालों और स्किन को पोषण मिलेगा। तो चलिए हम और आप मिलकर खेलते हैं, कौन बनाएगा पिंक दही। हमारी पहली रेसिपी है पिंक दही। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फ्रेश दही 2 बड़ी कटोरी, कद्दूकस किया हुआ गाजर 4 चम्मच, ग्रेटेड कैरेट्स, ग्रेटेड बीटरूट 4 चम्मच, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इसमें उतरने वाली हैं। शक्कर 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार, वैसे यहाँ पे मैं आधा चम्मच नमक ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए थोड़ी सी कोतमीर, अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच। वैसे हमारे नन्हे ऑडियंस इस पिंक कर्ड को एकदम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये नॉन फायर रेसिपी है और मजे से एंजॉय भी कर सकते हैं। पिंक दही को बनाने के लिए एक बर्तन में फ्रेश दही लीजिए, उसमें शक्कर नमक को अच्छे से मिक्स कीजिए, इसमें ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। फिर उस दही में ग्रेटेड बीटरूट और गाजर को ऐड कीजिए। एक चम्मच की मदद से गाजर और बीटरूट को उस दही में मिक्स कीजिए। अब जैसे ही आप मिक्स करना शुरू करेंगे, उसमें सुंदर सा पिंक कलर देखना शुरू हो जाएगा। अब इसमें बारीक कटी हुई कोथमीर डालकर डेकोरेशन कीजिए। हो गया। आप चाहे तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। अब इस पिंक कर्ड को एक सुंदर सी कांच की कटोरी में सर्व कीजिए। अगर आपके पास मिट्टी की कटोरी है तो उसमें भी ये पिंक दही आप सर्व कर सकते हैं, इससे उसका लुक और ज्यादा अच्छा होगा। आप सिंपल दाल चावल, खिचड़ी, रोटी या सब्जी के साथ भी इस पिंक दही का लुत्फ उठा सकते हैं। जैसे बिरयानी पुलाव के साथ ये पिंक कर्ड अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। कुछ नहीं तो सिंपल रोटी का रोल बनाकर आप इस पिंक दही के साथ खाकर देखिए जनाब। ऐसा इंस्टेंट जुगाड़ आपको और आपके अपनों को हेल्थ बेनिफिट्स ही देगा। इस पिंक दही को देखकर आप एकदम खुश हो जाएंगे। थाली पीट या फिर पराठे के साथ इस पिंक दही की जोड़ी तो एकदम सुपर हिट साबित होगी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। आज के इस शो में हम इसी टाइप की कुछ और जुगाड़ रेसिपीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पेश है इस पिंक दही की खिदमत में छोटी सी कविता। कविता का नाम है गुलाबी दही। जनाब एक बार बनाकर देखिए आप ये गुलाबी दही, पहला निवाला खाकर जरूर कहेंगे वाओ एकदम सही। कॉम्बिनेशन अनोखा सा, बीटरूट, गाजर और दही, हेल्दी खाना है ये, सोचने की जरूरत ही नहीं। दही खाने से पेट एकदम फिट,
गाजर और बीटरूट की जोड़ी बन गई सुपर हिट। अच्छा खाना खाकर पहले बनाओ सेहत, फिर जरूर रंग लाएगी आपकी कड़ी मेहनत। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। वैसे मेकअप करना सारी लेडीज को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में मेकअप को संभालना मुश्किल होता है। हमारी आज की रेसिपी मींस पिंक दही को खाने से आपकी स्किन पर एक ग्लो आएगा, मींस 24/7 मेकअप है कि नहीं। वैसे सुंदरता सच्चाई की मुस्कान है जब वो परफेक्ट आईने में अपना रंग दिखाए, और सच्चाई यही है कि हम आचार्य 90 FM के ऑडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, और दोस्तों का ख्याल रखना मतलब दोस्ती निभाना है जो हम कर रहे हैं। वैसे आपके हाथों से बनी वो कौन सी रेसिपी है जो आपके दोस्त को ज्यादा पसंद है? भाई मुझे तो मेरे दोस्तों के घर पे बनने वाला ट्रेडिशनल खाना बहुत पसंद है। अब चलिए आज हम बात करेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री की फेमस सिंगर आशाताई भोसले की। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि गाने के अलावा अपने हाथों से खाना बनाना और उसे औरों को खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। आशाताई उस इंटरव्यू के दौरान जीरा, धनिया और सौंफ से बने एक मसाले का जिक्र कर रही थी। क्या आप जानते हैं कि आशाताई एक रेस्टोरेंट चेन की ओनर थी? आशाज नाम के इन रेस्टोरेंट्स के 10 आउटलेट्स मिडिल ईस्ट और यूके में हैं। जितनी मीठी आशाताई की आवाज है उतनी ही टेस्टी रेसिपीज को बनाना आशाताई जानती थी। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आशाताई की बताई एक स्पेशल मसाला बनाने की रेसिपी सुनेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हम बात कर रहे थे आशाताई की। वैसे पैकेट वाले रेडीमेड मसाले तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन घर पर अपने हाथों से बनाए गए मसालों में अपनेपन की एक महक होती है जनाब। तो चलिए आज हम एक नॉन स्पाइसी टाइप का टेस्टी मसाला बनाने की रेसिपी आपको सुनाते हैं। इस होममेड मसाले को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सादा जीरा 1/2 किलो, बड़ी शेप मींस सौंफ यानी वरियाली 1/2 किलो, धनिया बीज 1/2 किलो। अब हम इस नॉन स्पाइसी मसाले को बनाने की रेसिपी सुनते हैं। एक कढ़ाई में जीरा लीजिए, लगभग 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर उसे अच्छे से भूनिए। ध्यान रहे उसे क्रिस्पी बनाना है, ना कि जलाना है। अब इस रोस्टेड जीरा को एक बड़ी प्लेट में फैला कर रखिए। इसी तरह से सौंफ और धनिया को भी आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। जब जीरा, धनिया और सौंफ पूरी तरह से ठंडे हो जाए तब उनको मिक्स कीजिए। अब मिक्सर के एक जार में इसे पीसकर इसका फाइन पाउडर बनाइए। जब आप इसे बनाना शुरू करेंगे तब पूरा घर इस मसाले की खुशबू से महक उठेगा। आहा, बिल्कुल आशादाई की आवाज की तरह खिल उठेगा। अब इस इंस्टेंट मसाले को आप एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिए। इस मसाले को स्टोर करने के लिए अगर कांच का कंटेनर आप यूज करें तो ये एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इससे उस मसाले की फ्रेशनेस बरकरार रहेगी। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओल्ड रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस नॉन स्पाइसी मसाले को हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो भाई, आप आशाताई स्टाइल की भरी हुई भिंडी की सब्जी बना सकते हैं। पहले तो भिंडी को अच्छे से धो लीजिए, फिर इसको वर्टिकल मींस सीधे टुकड़ों में काटिए, मतलब लंबा लंबा काटिए। फिर उन टुकड़ों को हल्दी, नमक और ये नॉन स्पाइसी मसाला लगाइए। एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कीजिए, फिर लो फ्लेम पर मसाला लगाई हुए भिंडी के टुकड़े डालिए। फिर उस पैन पर ढक्कन रखकर 5 मिनट तक उसे पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे मिक्स कीजिए। वापस उस पे ढक्कन लगाकर 2-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाइए। इस तरह से क्रिस्पी भिंडी फ्राई तैयार। गर्मियों में चिप्स या जंक फूड खाने की बजाय आप ये क्रिस्पी भिंडी खाएं और अपनी सेहत बनाएं। वैसे छाछ, कचुम्बर या फिर सैलेड में भी आप ये नॉन स्पाइसी मसाला यूज कर सकते हैं। हर रोज बनने वाली सब्जी या दाल में भी आप ये नॉन स्पाइसी मसाला 1 या 2 चम्मच भर के ऐड कर सकते हैं। वैसे इंदौर स्टाइल पोहा में सौंफ यूज होती है, राइट? तो अगली बार पोहा बनाते वक्त आप ये नॉन स्पाइसी मसाला डाल कर देखिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी अगली जुगाड़ रेसिपी एक महाराष्ट्रियन सब्जी है जिसका नाम है हुआ भाजी। हुआ भाजी ये एक नॉन फायर टाइप की रेसिपी है। वैसे हुलगा, हुड़िद, इनकी भाजी को भी हुआ भाजी के नाम से जाना जाता है। जिस हुआ भाजी की रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए इसकी रेसिपी सुनने। हुआ भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: स्प्रिंग अनियन मींस हरी प्याज यानी कि पातीचा कांदा। इसे धोकर किसी साफ कपड़े से इसका पानी पोछिए, फिर इसके बारीक टुकड़े कीजिए। इस तरह से कटी हुई प्याज हमें चाहिए 2 बड़ी कटोरी भर के। फिर चाहिए नमक स्वादानुसार, लेकिन यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच नमक ले रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, कच्चा तेल 4-5 चम्मच, दैट्स इट। अब हम सुनते हैं इस हुआ भाजी को बनाने की रेसिपी। सबसे पहले बारीक कटी हुई हरी प्याज को नमक और मिर्ची पाउडर लगाकर 5 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। इससे नमक और तीखेपन का स्वाद उस सब्जी में अच्छे से मिक्स होगा। फिर उसमें कच्चा मींस अनकुक्ड यानी सादा तेल बिना गरम किए ऐसे ही मिक्स कर दीजिए। इस तरह से तैयार हो गई है हमारी जुगाड़ रेसिपी जिसका नाम है हुआ भाजी। अब आप इसे ज्वार की रोटी के साथ मजे से खाइए। वैसे महाराष्ट्र के गांव में इसे कंफर्ट फूड के नाम से जाना जाता है।
जब मुंह में बेस्वाद सा टेस्ट हो या फिर कभी आपको खाना खाने का मन ही ना करे, तब आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए। लगभग 10 से 15 मिनट में रेडी होने वाली ये जुगाड़ रेसिपी आपको स्वाद का जायका जरूर याद दिलाएगी, क्योंकि हमारे दोस्तों की सेहत का ख्याल रखना यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। वैसे पुराने जमाने में बाहर से खाना ऑर्डर करने का सिस्टम तो था नहीं, तब ऐसा जुगाड़ करके अपनी फैमिली के लिए खाना बनाया जाता था। वैसे इंस्टेंट मींस 2 मिनट्स टूडल से कहीं ज्यादा हेल्दी तो हमारी जुगाड़ रेसिपीज है, बस जरूरत है तो अपनी सोच को बदलने की। भाई वो कहते हैं ना कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, अब समझदार को इशारा ही काफी है। देसी फूड खाओ और अपनी सेहत बनाओ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारती सिंह। वैसे जुगाड़ रेसिपीज को बनाते वक्त गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से किसी जबरदस्त रेसिपी को बनाते समय मेरे से कंफर्म गड़बड़ तो हो ही जाती है। वैसे मोस्ट ऑफ द डैडी लोग नौसिखिए बच्चों को किचन के काम सीखने के लिए सपोर्ट करते ही है, नो डाउट। लेकिन उस वक्त नौसिखिए कुक की मम्मी अलर्ट मोड पर एक्टिव हो जाती है। आई एम श्योर आप मेरे इस बात से सहमत हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर मुझ जैसे नौसिखिए अपने अंदर की कलाकारी दिखाने घर के किचन में VIP एंट्री मारते हैं। तब हमारी हर हरकत पर रिएक्शन होती है, आप समझ रहे हैं ना। इसीलिए जब मम्मी कहीं और गई हो तब मैं किचन में घुसती हूँ। अब मैं आपको एक रीसेंट किस्सा सुनाती हूँ। फ्रिज में जमी ढेर सारी मलाई देखकर मैंने होममेड घी बनाने का डिसाइड किया। इस प्रयोग को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैंने YouTube पर देसी स्टाइल में घी बनाने का वीडियो 5-6 बार देखा। फिर सुबह सवेरे 5 बजे के शुभ मुहूर्त पर हमने किचन में एंट्री मारी। लगभग 1 kg मतलब 1 किलो मलाई में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर उसे चर्नर से मिक्स करना था, और ये मिक्स करने का प्रोसीजर अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 मिनट के लिए चलने वाला था, और मिक्सर को बिल्कुल भी यूज नहीं करना था। लेकिन हुआ यूं कि 5 मिनट में ही मेरा पेशेंस खत्म हो गया और मेरे हाथों में दर्द होने लगा। इसलिए मैंने एक हाथ से मलाई वाले उस बर्तन को टाइट पकड़ा, दूसरे हाथ में चर्नर पकड़कर चम्मच की तरह उसे मलाई वाले बर्तन में घुमाना स्टार्ट किया। अगले 5 मिनट में फिर से मैं थक गई, फिर मैंने लेफ्ट हैंड से चन्नर को घुमाना स्टार्ट किया। कुछ टाइम बाद मैंने डिसाइड किया, सेल्फ डिक्लेयर किया कि जो है जैसे है वो यही है और यही ओके है। फिर मैंने उस बर्तन से लगभग 1 लोटा छाछ निकाल कर साइड में रख दी, और बचे हुए सो कॉल्ड बटर को एक कढ़ाई में डालकर गैस पर पकाने के लिए रख दिया। अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट में ही उसमें से जलने की स्मेल आने लगी, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया। लगभग आधी कटोरी घी जो गोल्डन कलर का था उसे मैंने उस बर्तन से निकाला, सुनहरा घी। फिर बचे हुए मक्खन को दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफर किया, क्योंकि पहली वाली तो जल गई थी। अब उस दूसरी कढ़ाई को भी मैंने गैस पर चढ़ाया, उस कढ़ाई में से भी जलने की स्मेल आने लगी। इस प्रोसीजर में सुबह के 11 बज गए, मतलब टोटल 6 घंटे वेस्ट हुए। फिर थककर मैंने घी बनाने का एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर दिया। इस अनोखे प्रयोग के दौरान हमारे किचन प्लेटफॉर्म पर बर्तनों का ढेर जमा हो गया, और इस प्रकार हमारा मिशन देसी घी जस्ट पास मींस जैसे तैसे सफल हुआ। उस वक्त अगर हमारी मम्मी जी वहां पे मौजूद होती तो फिर तब का नजारा कुछ और ही होता। तब पटाखों की लड़ी से सारा घर गूंज उठता, और अगले कई दिनों तक उसकी गूंज मुझे महसूस होती। जोक सपाट, वैसे मुझ जैसे नौसिखिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके ही एक दिन महान इंसान बनने वाले हैं, है कि नहीं। वैसे आपकी मम्मी का फेवरेट वेपन कौन सा है जिससे वो आपकी धुलाई करती है? यहाँ पर हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, हम जल्दी ही वापस आएंगे।

वेलकम बैक टू स्वाद का जायका। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब पेश है मम्मी जी के किचन वाले गुस्से पर एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है मम्मी जी का किचन। हमारे किचन की क्वीन मेरी मम्मी, इनके हाथों का खाना मतलब वाव और यम्मी। जब किचन में करती हूँ मैं VIP एंट्री, तब महाप्रसाद मिलना ये बात है कॉम्प्लीमेंट्री। किचन में होते हैं कुछ नए से प्रयोग, तब जोरदार भाषण का होता है संयोग। मम्मी जी को किचन लगता है एकदम प्यारा, एक्सपेरिमेंट करने का मेरा शौक है कितना न्यारा। जब किचन में होता है कोई विशेष गोलमाल, तब मम्मी जी से सुनिए अनोखे से सुर और ताल। देखकर मम्मी जी की मतवाली आंखें, बावरा सा मन मेरा यहाँ वहाँ भागे। किचन के एक्सपेरिमेंट से मचता है शोर, लेकिन हम है इतने ढीठ के होते ही नहीं बोर। अब चाहे जो भी हो, हूँ तो मम्मी जी की बेटी, किचन से ही लाऊंगी स्वाद के जायके की पेटी। आई एम श्योर ये कविता सुनकर हमारे ऑडियंस को कुछ अनोखे किस्से जरूर याद आ रहे होंगे। वैसे ये किचन में कुकिंग वाले एक्सपीरियंसेस एकदम यादगार ही होते हैं। भाई बेसिक कुकिंग तो हम सबको आनी ही चाहिए। नूडल्स और सैंडविचेस खाकर हम बोर होंगे तब कुछ और सोचना ही पड़ेगा ना। इसलिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो पर स्वाद का जायका जरूर सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सैंडविच से मुझे याद आया कि चीज बनाने वाली फेमस कंट्रीज में फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में मिलने वाली चीज की वैरायटीज के बारे में कुछ अनोखी बातें मैं बताने वाली हूँ। कलारी जम्मू और कश्मीर का एक लोकल और ट्रेडिशनल हिमालयी पनीर है, जिसे यूजुअली जम्मू का मोजरेला या हिमालयन चीज कहा जाता है। भैंस के दूध से बना ये कलारी चीज मोजरेला चीज जैसे ही होता है। वैसे पिज्जा और पास्ता मेकिंग में मोजरेला चीज का यूज होता है। कलारी चीज पकने के बाद ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और चिपचिपा सा होता है। कलारी चीज का टेस्ट थोड़ा खट्टा और सॉल्टी होता है। वैसे कलारी कुलचा इस फेमस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट कलारी चीज ही है। भाई हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में भी टोपलीनो पनीर मिलता है, जिसे सूरती चीज के नाम से जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के पारसी कम्युनिटी का ये एकदम स्पेशल और ट्रेडिशनल पनीर है। टोपलीनो पनीर इसके नाम से ही पता चलता है कि इसे टोपली मीन्स बास्केट में बनाया जाता है और इस वजह से इस पर जालीदार निशान होते हैं। टोपलीनो पनीर की स्पेशलिटी ये है कि इसे ताजा ही बनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस देसी पनीर की तारीफ की है और इसे लोकल से ग्लोबल बताया। इसे मोस्टली मुंबई और सूरत के पारसी घरों में बनाया जाता है। सुबात छे सरस। इंडियन चीज इज मेकिंग इट्स मार्क ग्लोबली। अब हम बात करेंगे छुरपी पनीर की। याक के दूध से बना ये ट्रेडिशनल और न्यूट्रिशियस पनीर ज्यादातर हिमालयी क्षेत्र स्पेशली नेपाल, सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बहुत फेमस है। छुरपी पनीर दो टाइप की होती है, एक होती है सॉफ्ट वाली जो सूप और करी में यूज होती है, दूसरी होती है एकदम हार्ड वाली जिसे चबाना मुश्किल है और ये कई वर्षों तक खराब नहीं होती। ज्यादा ठंडी वाले इलाके में गर्मी पाने के लिए छुरपी पनीर का इस्तेमाल होता है। वैसे क्या आपने कभी पनीर पानीपुरी खाई है क्या? नहीं। वैसे पनीर आइसक्रीम भी होती है, यकीन नहीं आ रहा है? ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी अगली जुगाड़ रेसिपी एक महाराष्ट्रीयन डिश है जिसका नाम है फोड़नीची पोळी मींस तड़के वाली रोटी। अक्सर ऐसा होता है कि रोटियां बची हैं और सब्जी खत्म हो गई, तब करे भी तो क्या करे, ऐसे वक्त पर करना पड़ता है जुगाड़। ऐसा जुगाड़ जिससे सब्जी भी ना बनानी पड़े और रोटियां भी वेस्ट ना हो, तब हम बना सकते हैं फोड़नीची पोळी। अब हम इसे बनाने की रेसिपी सुनते हैं। एक सिंपल सा तड़का लगाकर रोटियों का लुक और टेस्ट बदला जा सकता है। तो चलिए
अब हम फोड़नीची पूरी या फोड़नीची चपाती की रेसिपी सुनते हैं। सपोज आपके किचन में अप्रोक्सीमेटली 6 रोटियां बची हैं, ओके? तो सबसे पहले आप इन रोटियों के छोटे टुकड़े बनाइए। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, सारी रोटियों का रोल बनाइए। उस रोल को चाकू की मदद से पतला पतला काटिए, मतलब लंबा लंबा, जिससे रोटी के टुकड़े नूडल टाइप दिखेंगे। अब एक प्याज बारीक टुकड़ों में काटिए, मींस कांदा काटिए। एक कढ़ाई में तेल या घी को गरम कीजिए, फिर हमें उसमें तड़का लगाना है, इसलिए गरम तेल में चुटकी भर राई, जीरा, बारीक कटी हुई थोड़ी लहसुन, कड़ी पत्ता डालकर भूनिए, इसको गुजराती में बोलते हैं वघार लगाना। फिर उसमें हींग, थोड़ी हरी मिर्ची और कांदा डालिए। 2 मिनट तक इसे पकने दीजिए। आप चाहे तो टमाटर काटकर इसमें डाल सकते हैं। फिर रोटी के टुकड़े और स्वादानुसार नमक डालिए। सब चीजों को अच्छे से मिलाकर उसे पकने दीजिए। फिर उस कढ़ाई पे ढक्कन रखिए, तभी आपको लो फ्लेम पे 2-4 मिनट तक उसे पकाना है। उसमें थोड़ी कोतमीर से गार्निश कीजिए। फिर एक प्लेट में फोड़नीची पूरी को दही के साथ सर्व कीजिए। ये कॉम्बिनेशन आपको सुकून ही देगा, ना रोटियां वेस्ट हुई, ना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। ओके, हमारी आज की जुगाड़ रेसिपीज आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। वैसे बची हुई रोटियों से फोड़नीची पूरी तो हमने बना ली, अब मान लीजिए सफेद चावल बचे हैं, तब क्या करें? अरे भाई फिकर नॉट, सेम स्टेप्स फॉलो करके आप फोड़नीचा भात मींस तड़के वाला चावल भी बना सकते हैं। अब एक और जुगाड़ रेसिपी मैंने आपको इंस्टेंट तरीके से बता दी है। अब लास्ट में हम एक और जुगाड़ रेसिपी सुनते हैं। ये महाराष्ट्रियन और कर्नाटकी स्टाइल का झटपट बनने वाला एक नाश्ता है। सिर्फ 10 मिनटों में ही हम इसे बना सकते हैं और इस नाश्ते वाली रेसिपी का नाम है सुशीला। यस, ठीक सुना आपने, इस रेसिपी को सुशीला कहते हैं। अब हम इसकी रेसिपी सुनते हैं। सुशीला बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कुरमुरा 4 कटोरी, तेल 2 बड़े चम्मच, कच्चा सेंगदाना 1/2 कप, राई और जीरा 1/2 चम्मच, हींग चुटकी भर, कड़ी पत्ता 15 से 20 पत्ते, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1 या 2, बारीक कटा हुआ कांदा 1, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक और शक्कर स्वादानुसार, नींबू का रस और कोथमीर गार्निश के लिए। अब हम इसकी रेसिपी सुनते हैं। एक बड़ी छलनी में सारे कुरमुरे डालिए, 1 मिनट के लिए इसे पानी से धोइए, फिर उसका पानी हटाइए। अब हमें तड़का लगाना है। एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए, फिर उसमें राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता, सिंगदाना और हरी मिर्ची डालिए। बाद में उसमें प्याज मींस कांदा डालिए। आप चाहे तो बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं। फिर हल्दी डालकर उसे मिक्स कीजिए। फाइनली भीगे हुए कुरमुरे, नमक और शक्कर डालिए। लगभग 2-3 मिनट के लिए उस पर ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर पकाइए। अब कोथमीर और नींबू रस के साथ सुशीला को गार्निश कीजिए। चाय के साथ आप ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक सुशीला का लुत्फ उठाइए। है ना इंस्टेंट जुगाड़ रेसिपी भाई? आपने हमारे आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, अगर नहीं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं दोस्तों, दिल जीत भी लेते हैं और चीर भी देते हैं। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आचार्य 90 FM के ऑडियंस से मिलने का ये मेरा वादा, नहीं सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। RJ भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

पलके बिछा के स्वागत में खड़े हैं हम। आइए, आपके आने से रोशन है हर पल। खुशियों का कारवा साथ लाई हूँ, स्वाद के जायके की बहार लाई हूँ। आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। केम छो भाई लोग, सब मजा मा? भाई सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि आप सब आचार्य 90 FM के खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना ये हमारा फर्ज है। वैसे आप सबने आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, अगर नहीं तो अभी तुरंत हमारे दोस्ती वाले आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दोस्ती को कन्फर्म कीजिए। अब चलिए, अब हम बनाने जा रहे हैं कुछ इंस्टेंट रेसिपीज जिन्हें झटपट तरीके से बनाकर फटाफट खाया जाता है। मुझ जैसे नौसिखिए कुक के लिए ये एकदम आसान टाइप की रेसिपी है। तो तैयार हो जाइए हमारी फर्स्ट रेसिपी, जो एक फेमस इंडियन स्टार्टर है और इसका नाम है मसाला पापड़। छोटी भूख या फिर एज अ स्टार्टर आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। मसाला पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मूंग या उड़द दाल पापड़ 2, तेल 2 चम्मच, टमाटर के टुकड़े 4 चम्मच, प्याज के टुकड़े 4 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया मीन्स कोतमीर 2 चम्मच, नींबू 1, नमक 2 चुटकी, चाट मसाला 1 चम्मच और ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं उस खाने में उतरने वाली है। अब हम मसाला पापड़ बनाने की आसान सी रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप तवे पर थोड़ा तेल फैलाकर पापड़ को सेक लीजिए। ऐसा करने से ये पापड़ ना ही एकदम ड्राई और ना ही एकदम ऑयली होंगे। हर पापड़ को एक सेपरेट प्लेट में रखिए। फिर एक कटोरी में टमाटर और प्याज के टुकड़ों को डालिए। उसमें नमक और चाट मसाला मिक्स कीजिए। अब इस मिश्रण को भुने हुए पापड़ पर अच्छे से फैलाइए। फिर उस पर नींबू निचोड़िए। फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर मीन्स कोतमीर से गार्निश कीजिए। इस तरह से आपका मसाला पापड़ हो गया है तैयार और बच्चा पार्टी इस मसाला पापड़ को खाने के लिए हो रही है बेकरार। तो भाई देर किस बात की, मौका भी है और दस्तूर भी है, अब तो मसाला पापड़ बनाना ही है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस मसाला पापड़ को आप दाल चावल, सब्जी रोटी या फिर एज अ इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं। पैकेट वाले चिप्स वगैरह खाने से अच्छा है कि हम होममेड मसाला पापड़ खाएं, क्योंकि होममेड खाने में टेस्ट और हेल्थ दोनों ही होता है। वैसे भी इन गर्मियों के दिनों में ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसका इलाज है मसाला पापड़। इस पापड़ की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है प्यारे प्यारे पापड़। सबको प्यारे लगते हैं खर्रम खुर्रम पापड़, उसका एक निवाला लेने वाला दोबारा मांगेगा आकर। इसे बनाने लगते हैं चटपटे मसाले और दाल, पापड़ से ही सजता है हर हिंदुस्तानी थाल। चाहे तलो या भूनो क्रिस्पी इसकी आवाज, खाने का जायका बढ़ाता इसका अनोखा सा स्वाद। पापड़ हमारी परंपरा का है महत्वपूर्ण व्यंजन, हर रोज खाओ एक फिर भी बढ़ेगा नहीं वजन। हमारा पारंपरिक खाना नहीं है जंक फूड, स्वाद है इतना अच्छा कि सुधर देगा बिगड़ा मूड। दोबारा से अपनाएं हम हमारी भारतीय संस्कृति, देसी खाना खाकर हम पाए अच्छी प्रकृति। हमारे पारंपरिक व्यंजन नहीं किसी से कम, सारे विश्व में भारत का डंका, यही है हमारा प्रण। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा।

वैसे पापड़ की तारीफ तो हमने सुन ली, अब हम चावल की एक सिंपल सी रेसिपी सुनते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पहले भोगी का त्योहार होता है। भोगी के दिन मेरे पड़ोस की एक आंटी जो कर्नाटक के बेलगांव से हैं, वो इसे बनाती थी। आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम इसे समर सीजन स्पेशल कूलिंग रेसिपी के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस रेसिपी का नाम है दही कांदा चावल। इसे बनाना आसान तो है ही, लेकिन इसे एंजॉय करना एकदम इंटरेस्टिंग है। दही कांदा चावल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: जीरा डालकर पकाए हुए चावल 2 कटोरी। यहाँ पर आप कोई भी चावल ले सकते हैं, जैसे बासमती, कोलम या उकड़ा चावल। बस उन्हें अच्छे से पकाकर रूम टेम्परेचर पर लाइए। फिर हमें चाहिए ताजा दही 1 कटोरी, कोथमीर बारीक काटकर 2 चम्मच, नमक स्वादानुसार। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ। स्प्रिंग ऑनियन मीन्स हरी प्याज बारीक काटकर 1 कटोरी। दैट्स इट। अब हम इसे बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में पके हुए चावल, दही, हरी प्याज, नमक, इन सबको अपने हाथों से मिक्स कीजिए। हाथों से मिक्स करने से ये अच्छे से मिक्स होता है। फिर एक सुंदर सी प्लेट में इस चावल को परोसिए और बारीक कटी हुई कोथमीर से गार्निश कीजिए। है ना झटपट तैयार होने वाली आसान सी रेसिपी। दही चावल और प्याज को एक साथ खाने से पेट में ठंडक सी छा जाती है और ये पचने में भी आसान है। इसे खाने से एसिडिटी कंट्रोल होती है और पेट भरने की फीलिंग भी मिलती है। हर रोज सुबह दही चावल का नाश्ता आप खाकर ट्राई तो कीजिए, फिर दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे आप। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, ताजा दही को यूज करना बेटर ऑप्शन है। खट्टा दही खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह के समय दही खाना चाहिए, दोपहर के वक्त छाछ पीनी चाहिए और शाम को दूध पीना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। अब खाना बनाकर मैं तो थक गई भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे मेरे पड़ोस की आंटी भोगी की थाली में दही चावल

प्याज के साथ गाजर का कचुम्बर भी देती थी। गाजर के कचुम्बर का टेस्ट भी सुपर्ब है। और खाने की थाली जितनी ज्यादा कलरफुल दिखती हो उतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो पेश है हमारी अगली कलरफुल रेसिपी, जिसका नाम है गाजराची कोशिंबीर, मीन्स गाजर का कचुम्बर। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कद्दूकस किए हुए गाजर मीन्स ग्रेटेड कैरेट्स 2 कटोरी, भुने हुए सिंगदाने का दरदरा पाउडर 4 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1, नींबू का रस 1 चम्मच, कोथमीर गार्निश के लिए। अब हम गाजर का कचुम्बर बनाने की रेसिपी सुनते हैं। एक बर्तन में कद्दूकस किए हुए गाजर, सिंगदाना पाउडर, नमक, शक्कर और थोड़ा नींबू का रस सब एक साथ मिलाकर अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर एक कांच की कटोरी में इस इंस्टेंट कचुम्बर को सर्व कीजिए। डेकोरेशन के लिए उस पर थोड़ी कोथमीर डालिए। दैट्स इट। गाजराची कोशिंबीर मीन्स गाजर का कचुम्बर तैयार है खाने के लिए। आप चाहे तो थोड़े से घी में जीरा और कड़ी पत्ता का तड़का लगाकर इस पर डाल सकते हैं। इस तरह गाजर के टेस्टी कचुम्बर को बनाइए और बेझिझक इसका लुत्फ उठाइए। वैसे गाजर का हलवा तो हम सब खाते ही हैं, लेकिन गाजर का कचुम्बर भी कुछ कम नहीं है। अपनी भारतीय संस्कृति में ऐसे कई सारे व्यंजन हैं जो हम भूल से गए हैं, और आचार्य 90 FM के स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारी भारतीय संस्कृति को फिर से जानने की कोशिश जरूर करेंगे। देखा जाए तो ऐसी क्विक रेसिपीज से पेट भरता ही है, साथ ही कुकिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है। ज्यादा खाना बनाकर उसे फ्रिज में रखना, मतलब बासी बनाकर खाना, ये हमारी खाद्य संस्कृति बिल्कुल नहीं है। अगर ज्यादा खाना बने तो उसे अपनों के साथ शेयर कीजिए और मिल बांट कर खाइए। इससे आपसी दोस्ती और अपनापन बढ़ेगा। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे फेमस लेडी शेफ तरला दलाल जी की। खाना पकाने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ईयर 2007 में तरला जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेजिटेरियन रेसिपी से रिलेटेड 170 से ज्यादा कुक बुक तरला जी ने लिखी और वेजिटेरियन डेलिकेसीज को कई सारे घरों तक पहुंचाया। तरला जी ने शाकाहारी व्यंजनों को एक नया नजरिया देकर ट्रेडिशनल खान पान को मॉडर्न टच दिया है। ईयर 2023 में उन पर तरला इस नाम की एक बायोपिक फिल्म भी आई थी। हमें नाज है, भारतीय शाकाहारी पाक कला की जूलिया चाइल्ड मीन्स शेफ तरला दलाल जी पर, जिन्होंने कुकिंग को एज अ मीडियम यूज करके सारी दुनिया में शाकाहार को फेमस किया। आज हम बात करेंगे गुजरात के एक फेमस पतले और क्रिस्पी ट्रेडिशनल नाश्ते के बारे में। ये नाश्ता मेनली गेहूं का आटा, तेल और मसालों से बनता है। ये लाइट वेट होने की वजह से एक हेल्दी स्नैक माना जाता है। इसे मेनली ट्रैवलिंग के दौरान खाना प्रेफर किया जाता है। वैसे हमारे गुजराती और राजस्थानी व्यंजनों में ये काफी फेमस है। लो कैलोरी और हाई फाइबर होने के कारण इसे वेट कंट्रोल करने वाला खाना इस रूप में पहचाना जाता। मैं बात कर रही हूँ ऑल टाइम फेवरेट खाकरा इस व्यंजन के बारे में। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। हमारे नन्हे ऑडियंस फिलहाल समर वेकेशन मोड पर है, राइट? तो क्यों ना हम इनके लिए ही खाकरा से बनने वाली कोई चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाएं? इटालियन पिज्जा तो सबको मालूम ही है कि नहीं? तो आज हम खाकरा यूज करके इंडियन स्टाइल खाकरा पिज्जा बनाते हैं। खाकरा को एज अ बेस यूज करके उस पर पिज्जा सॉस, सब्जियां और चीज लगाकर हम पिज्जा को भारतीय रूप में ढालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए बच्चा पार्टी स्पेशल खाकरा पिज्जा बनाने के लिए। खाकरा पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: प्लेन या मसाला खाकरा 4, टोमेटो सॉस 4 बड़े चम्मच, ग्रेटेड चीज आइदर मोजरेला और प्रोसेस्ड, प्याज, शिमला मिर्च, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न सब मिलाकर 1 कप। यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को बारीक काटकर यूज कीजिए। फिर हमें चाहिए चाट मसाला, ओरिगानो सीड्स, चिली फ्लेक्स, सब स्वादानुसार। यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच ओरिगानो सीड्स और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ले रही हूँ।
फिर हमें चाहिए मक्खन या घी 1 चम्मच। अब हम खाकरा पिज्जा बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले हमें पिज्जा बेस को तैयार करना है, इसलिए खाकरे के ऊपर टोमेटो सॉस की एक पतली लेयर लगाइए। अब स्वीट कॉर्न के दाने, कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च को उस खाकरे पर इक्वली फैलाइए। अब इस पर बहुत सारा ग्रेटेड चीज डालिए। आखिर में चाट मसाला, ओरेगानो सीड्स और चिली फ्लेक्स को इस पिज्जा पर छिड़के। फिर एक नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा सा मक्खन या घी लगाइए। अब तैयार पिज्जा को ध्यान से उठाकर एकदम आराम से उस पैन में रख दीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगाकर एकदम लो फ्लेम पे उसे पकाइए। लगभग 2-3 मिनट के बाद पिज्जा के ऊपर का चीज मेल्ट होने लगेगा। फिर उसे एक सर्विंग प्लेट में संभाल कर निकालिए। इस तरह से होममेड और इंडियन स्टाइल खाकरा पिज्जा हो गया है तैयार, और इसे टेस्ट करने बच्चा पार्टी है एकदम बेकरार। तो भाई, शुभ काम में देरी क्यों, झटपट खाकरा पिज्जा बनाइए और फटाफट से इसका लुत्फ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। वैसे अगर आप चाहें तो इस पिज्जा पर बारीक कटा हुआ पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये और न्यूट्रिशियस बनेगा। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कुकिंग करना हम सबको सीखना ही चाहिए। बच्चों को सॉलिड और लिक्विड पदार्थों में क्या फर्क है ये एक्सप्लेन करने के लिए किचन एक अच्छा मीडियम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, छोटे बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए चम्मच चलाना, छीलना, मिक्स करना, ऐसी एक्टिविटीज एकदम यूजफुल है। किचन से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से छोटे बच्चे दूसरों के काम की सराहना करना सीखते हैं, क्योंकि खाना बनाने में लगने वाली मेहनत को बच्चे खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज सीखने के लिए अन्न का सम्मान करना भी सीखेंगे। भाई, लेक्चर मेथड से बेहतर तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही होता है कि नहीं? इनफैक्ट कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज से हमारे नन्हे ऑडियंस बिल्कुल बोर नहीं होंगे, बल्कि खाना बनाना और औरों के साथ उसे शेयर करना, इस काम के लिए वो एक्साइटेड ही रहेंगे। आज मैं आपको महाभारत के 5 पांडवों में से एक पांडव की कहानी सुनाती हूँ। अज्ञातवास के समय महाबली भीम वल्लभ इस नाम को धारण कर विराट नाम के एक राजा के किचन में एज अ कुक काम करने लगे। एक बार क्या हुआ कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजा विराट के महल में पधारे। तब किचन में ज्यादा कुछ सब्जियां नहीं बची थी। तब गदाधारी भीम यानी वल्लभ ने जितनी भी थोड़ी बहुत सब्जियां थी उन सबको मिलाकर एक नया व्यंजन बनाया, जिसका नाम था अवियल। और इस अवियल को खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य काफी खुश हुए। साउथ इंडिया, मेनली केरल राज्य में अवियल इस व्यंजन को इम्पोर्टेंट माना जाता है। गदाधारी भीम, जिनमें 1000 हाथियों की शक्ति थी, वो खुद एक कुकिंग एक्सपर्ट थे। और खास बात ये है कि खाना बनाना और खूब खाना, इन दोनों कलाओं में भीम एक्सपर्ट थे। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? खाने और खिलाने की इंटरेस्टिंग बातें तो चलती ही रहेंगी। अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइए। वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।

वेलकम बैक टू स्वाद का जायका। आप सुन रहे हैं अच्छा NITFM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने गदाधारी भीम की स्टोरी सुनी। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि खाना खाने वाले को खाना बनाना आए तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल डेवलप होती है। किचन में काम करना एक रूटीन वर्क होता है जो हमें डिसिप्लिन मतलब अनुशासन सिखाता है। कुकिंग करते समय मसालों और टेस्ट को बैलेंस करना पड़ता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस रखना पड़ता है। ताजी सब्जियां हमें मेहनत से मिले रिजल्ट को दिखाती है, उसे देखकर हम भी प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जनाब इसीलिए तो किचन में एंट्री मारिए और कुकिंग की अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए। जो भी चीजें अवेलेबल है उन्हें इस्तेमाल करके जिसने खाना बनाना सीख लिया, समझो उसने जिंदगी की कठिनाइयों को फेस करके जिंदगी जीना सीख लिया है कि नहीं। आप सुन रहे हैं अच्छा NITFM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई घर का किचन मींस घर का दिल होता है। यहाँ पर बर्तनों की खनक और मसालों की महक हमें प्यार और पोषण से भरती है। इस रसोई घर की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मेरा रसोई घर एक जादुई कोना। घर के अंदर एक और घर, नाम है उसका रसोई घर। पूरे घर में जादुई नगरी बसती है सिर्फ यहीं पर। कढ़ाई है बीमार तो कुकर आगे आया, बजाकर सीटियां सारा टेंशन भगाया। पेट की आग बुझाता काला सा एक तवा, राई जीरे के छौंक से खुशबू बिखेरती हवा। किचन से ही पाती शक्ति, नाम है जिसका देह। घी की खुशबू से पाते हैं हम सब स्नेह। प्याज टमाटर अदरक लहसुन इन चीजों का जब लगे तड़का, तब हींग की मनमोहक खुशबू से चंचल मन मेरा बहका। घर का ये कोना जीवन की हकीकत बतलाता, मेरा रसोई घर मुझे जिंदगी जीना सिखलाता। आप सुन रहे हैं आचार्य 90FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। भाई टेस्टी खाना और आचार्य 90FM पर बजने वाला गाना ये तो सुपर हिट कॉम्बिनेशन है। आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले। स्वाद का जायका इस सफर पर हमें तजुर्बे तमाम मिले। मिलकर बिछड़ना और बिछड़कर फिर मिलना यही है जिंदगी का दस्तूर। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, इसमें मेरा क्या कसूर। आज के लिए बस इतना ही। हम वापस मिलेंगे हर सोमवार दोपहर 1 बजे और हर शुक्रवार शाम 4 बजे आरजे भारतीय सीमा की तरफ से। आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: नको घालू नको घालू आ गई ये नशालू।
1: अरे दादा राजा अशलाड़ी गुड़ी न तुझा अब रूता वाजा बेंड बाजा बेंड बाजा बेंड बाजा अरे

0: माँ की इकलौती बेटी और अपने स्टेप डैड की पांचवी सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की।
1: The girl's got everything.

सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ। अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पड़े।

छोरा गंगा किनारे बाला, ओ छोरा गंगा किनारे बाला, ओ खई के पहन बनाओ रत बाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के पहन बनाओ रत बाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो

0: पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

0: सबको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, ला मैं बनाता हूँ मिठाई।

कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं। हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगी।

0: विशाल, मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: फाइव मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.